राघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् गंगादि पुण्य सरितः प्रणयाति बद्धाः सद्रत्न हेम जल कुंभ शतैरिदानीं त्वां स्नापयन्ति विधिवच्च जयोग निद्राम् श्री राघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् मंदार पुष्पदधि कुंकुमम्।

जय जय श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य पदवाक्य प्रमाण पारावारीण शेखर यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाध्यष्टांग योग।

जय जय श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य पदवाक्य प्रमाण पारावारीण शेखर यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाध्यष्टांग योगानुष्ठान गरिष्ठ षड् दर्शनाचार्य वर्य निखिल विद्या चक्रवर्तिन सर्वतंत्र स्वतंत्र चतुष्ष